0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन था
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا إله إلا الله.

आज की रात इसलिए खुद ही कहा जो भी कहा आज की रात जब उन्हें सिदरा से जाते हुए तन्हा पाया। ये एक नई नात के चंद अशआर है और शायर ने हुजूर की मेराज बयान की। कहता है

जब उन्हें सिदरा से जाते हुए तन्हा पाया,

पूछो जिगर, पूछो जिगरील से, पूछो जिगरील से सरकार को कैसा पाया। फूल खुर्शीद सबा चांद सितारे शबनम

0: ये थे चंद्रशाह, जो कि आप हजरात ने गवारा कर लिए। अफरमाइश पे मैं नाथ पढ़ा हूँ शायर ने, ओ शायर।
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: जो शख्स रोजाना 1000 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा, इंशाल्लाह उसके दिल से तमाम शक व शुबा दूर हो जाएंगे और अज़्म व यकीन की क़ुव्वत नसीब होगी। जो लाइलाज मरीज बाकसरत इस इस्मे मुबारक का विर्द रखे और इसके बाद शिफा की दुआ मांगे, उसको शिफाए कामिल नसीब होगी। जो लाइलाज मरीज बाकसरत इस इस्मे मुबारक का विर्द रखे और इसके बाद शिफा की दुआ मांगे,

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678
9: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड 01274201679
10: saferaider.co.uk UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्ट हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट मैं मूत रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत रिजवी
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274-306-77.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Call the studio now, 01274-306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274-306677 or 07800-599-563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to...
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي

حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 14.
1: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio on 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
7: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
8: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
8: लीज रोड फेस्टिवल
7: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
8: आप भी
7: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
8: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duffield Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स
1: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
8: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
11: UK सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइक ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306 77.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678
9: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ़ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड 01274201679
10: saferaider.co.uk UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत्र अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत्र अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत्र चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट मैं मूत्र ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274 414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
12: And entertainment or entertaining program hota hai. बिल्कुल जी ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर सुबह नौ के साथ आपको सलाम अर्ज करती हैं खुश आमदेद सुबह बखैर जी बखैर अगले हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 आते ही जी कॉल्स आपके लिए मैंने बहाल कर दी है प्रोग्राम में शिरकत करें और हमारे प्रोग्राम की जान तो जाहिर बात है सुनने वाले होते हैं जो honestly speaking इतनी दिलचस्पी से दिलजमई से प्रोग्राम नेगेटिव मेरा सुनते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया और हमारे पास एक और नंबर है जी व्हाट्सएप नंबर हमारा 07800599563 आप इसके ऊपर भी हमें कॉल कर सकते हैं बहुत आपकी कॉल्स का एहतराम किया जाएगा और स्टूडियो में जब आप स्टूडियो के नंबर 01274306677 पर नंबर आप कॉल मिलाते हैं आपकी कॉल को हमेशा इसका खैर मकदम किया जाता है अकॉर्डिंगली आपकी ख्वाहिश और डिजायर का जी ख्याल रखा जाता है बिल्कुल सामने क्राम सुबह 9 में ताजा ताजा खबरें हैं ब्यूटीफुल हमारे पास अकवाले जरिए हैं ब्यूटीफुल टॉपिक है टॉपिक ऐसा कि आप झूम उठेंगे वाओ हमेशा की तरह वेरी सिलेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव आप कहेंगे वाओ तबीयत हशाश बशाश हो गई क्यों ना हो गई मौसम की रंगीनियां मौसम की ताजगियां मौसम का साथ हमारे साथ हो तबीयत खिली खिली निखरी निखरी निखरी निखरी उजली उजली रखती है और सुबह नौ का मकसद भी यही होता है कि आपकी तबीयत को खुश रखना आबाद रखना और बहुत सी ढेरों ढेर दुआएं भी होती हैं सामने क्राम मशक्कत आमेज काम में मुशक्कत खेज कह लें हम मुशक्कत से भरपूर काम है जी जहां भी हर काम को मेहनत लगती है हर काम हर हुनरकारी में हमारी मेहनत और फिर ये कहें कि मेंटली इतनी स्ट्रेस समटाइम्स होती है दिल चाहता है कि कोई बड़ा वो कहता है कहते हैं ना कि तफरीह तबा से भरपूर कुछ खुशगवार म्यूजिक सा हो जिसकी शुरुआत जिससे की जाए अपने काम की और ताकि थकावट फील ना हो किसी भी शुभ जिंदगी में ताल्लुक हो सकता है इन अफराद का हमारे पास जो इस वक्त मैंने कहा पहले आपकी तबीयत जो है वो बहाल की जाए क्योंकि जो मौसीकी के शौकीन जिसे कह लें जिनको जी बड़े दिलचस्प सॉन्ग्स वो कहते हैं कि भई हमें रूखे फीके सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं सुनाना हमारा मूड ऑफ हो जाता है मैंने सोचा जी ठीक है आप के लिए प्रोग्राम है फिर आप ही की नजर हम एक ब्यूटीफुल सॉन्ग करते हैं और उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है टॉपिक भाई आपको थोड़ा सा सस्पेंस और सरप्राइज तो मैं रखती होती हूँ हमेशा की तरह धीरे धीरे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें धीरे धीरे आपकी इच्छा और मन की तमन्ना जो है हम अच्छी तरह पूरी करेंगे क्योंकि आप जो है मौसीकी के दिलदादा है म्यूजिक के और जो मुझे फीडबैक मिलती है कि प्लीज आपने खुश्क म्यूजिक जो है हमारी किस्मत में नहीं लिख देना तो मैंने सोचा भाई आज का हर एक जो सॉन्ग है आपकी तफरीह तबा को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और खूबसूरत सा हो हमारी जो मौसीकी की दुनिया में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फनकार जो होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे जो होते हैं दाद पाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे इनके फैंस होते हैं और किसी एक जगह मखसूस जगह इलाके से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता ये एक मखसूस जगह से ताल्लुक रखने के बावजूद पूरी दुनिया पे इनकी आवाज जब छाई होती है अब मैं बात को मजीद इधर उधर तो नहीं लेके जाऊंगी कि जी इस वक्त वैसे पूरी दुनिया मेरी भी आवाज सुन रही है अब बात समझ गए होंगे बस यही होता है कि वो कहते हैं सियाने कहते हैं अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है बिल्कुल बड़े बड़े अकलमंद हजरात खवातीन हजरात मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से सुन रहे हैं थैंक यू जी दूर क्यों जा रहा है जी हमारी आशा भोसले जो है बैन अल-अक़वामी सतह पर एक नाम माना जाता है और इनकी ये लिरिक्स जो है वाओ विद वीडियो तो इसकी क्या ही बात होगी. आपको ये एक गजल है जी और गजल के शौकीन और दिलदादा जो लोग हैं यकीनन इसे पसंद फरमाएंगे. चलिए देर किस बात की है मौजूद सामने इकराम आपकी नजर आशा भोसले की ये खूबसूरत सी गजल करते हैं. रोमांटिक गजल इसे लिखा गया है जी. आइए रोमांटिक सी गजल जो है ताकि मूड बहाल रहे. क्या ख्याल है आपका. चलिए सुनते हैं जी.

0: जी सामाईन इकराम, चले अब मैं सोच रही थी कि जी थोड़ा सा लॉन्ग है ये सॉन्ग, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही जल्दी हो गया गाना, ब्यूटीफुल था। लेकिन चले खैर, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर हमारी एक ब्रेक भी हमारा इंतजार कर रही है। हमारी वेबसाइट ब्रेफरेशन रेडियो .co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। सॉन्ग्स आपके लिए बहुत जबरदस्त तैयार करके रखे हैं जी, योर फेवरेट। यू विल एंजॉय दिस म्यूजिक टुडे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह तो कहना होता है ना, अच्छी बात है। एनीवे, मैं देख रही हूं कि छोटा सा कुछ लिरिक्स जो है आपकी खिदमत में पेश कर दूं, तो चलिए। नहीं भाई, अभी एक मिनट रह गया है ये ब्रेक का जो टाइम होता है ना, हमें बड़ी एहतियात से देखना पड़ता है, क्योंकि भाई आप लोगों की कमर्शियल्स, आप लोगों की जो एड्स हैं वो चल रही होती हैं, तो उनको प्रमोट करना हमारा अवलीन फर्ज है भाई, तो फर्ज के ऊपर नजर होती है। इसके अलावा हमारा नंबर जो है 07800599563, इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। अब क्या कहूं कि मैं खुद भी कल जो प्रोग्राम था महबूब इलाही साहब का भी, तो अक्सर मेरा प्रोग्राम जो था ज्यादातर मैं चलते फिरते कहीं किचन में हूं, कोई काम कर रही हूं कोने कुदरे में, लेकिन ये होता है कि हमारा आप जो है अगर आप डाउनलोड कर लें, इसकी बहुत सहूलत है, और गाड़ी में भी आप DAB पर डैप पर हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही खूबसूरती से सुनते सुनते सुहाना सुहाना सफर जो है वो तय कर लेते हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
1: एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk, दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15-16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रैडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ, एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th and 16th of August 2026 लीड रोड फेस्टिवल।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
8: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
8: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
7: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD9 5BR 01274 491 442,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ,
4: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD9 4QU 01274 056 014, सोफी ज्वेलर्स।
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।

0: क्या बेल्स जाने का इरादा है?
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
0: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622। लव
1: फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

जी बिल्कुल, मदर सावीन इकराम ब्राफ्रेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग एक खूबसूरत सा प्रोग्राम में, इसलिए खूबसूरत कहूंगी कि टॉपिक आज का आप बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज करती हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, जो हमारा और आपका साथ है 10 बजे से 1 बजे तक होगा, तो वो वैसे ये आपस की बात है कि जब हम कहते हैं 10 से 1 बजे तक, तो थोड़ा सा अरे घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सफर रखेंगे। जब जहाज जो है प्लेन एरोप्लेन चला जाता है 22 फीट 22,000 इसको कि 22,000 फीट की बुलंदी पे जब जाता है, तो एयर होस्टेस जो है वो अनाउंसमेंट करती है। मेरा ख्याल है इतना ही फिगर कमोबेश होगा, चले कुछ कमी बेशी होगी तो आप खुद उसको अकाउंटिंग को जो है ना सही काउंट कर लीजिएगा, अकाउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमोबेश जब इतनी बुलंदी पे जहाज जाता, तो एयर होस्टेस जो है, जब खवातीन व हजरात इस वक्त हम 22,000 फीट की बुलंदी पर सफर कर रहे हैं, तो जो बड़े नाजुक दिल होते कहते हैं बयान करना को जरूरी सी वो बताना जरूरी था, चुप रहती हम चुप करके बैठे हुए डराती क्यों तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी ये डराने वाली ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी बात नहीं है। आपका सफर इतना अच्छा रहेगा, इतना खूबसूरत कि आप खुद कहेंगे वाओ अमेजिंग एंटरटेनमेंट, होपफुली इंशाल्लाह। तो हमारी वेबसाइट जो है वो brafrationradio.co.uk है, उसे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। हमारे और जो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है हमारे मोबाइल के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है 07800599563। बहुत कुछ अब याद आ रहा है, धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि सॉन्ग जो है एक यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये रोमांटिक सॉन्ग 2026 का है, ब्यूटीफुल है जी, पंजाबी सॉन्ग है। तो मैं के थोड़ा सा हट के, हमेशा ही तरह आयशा का मकसद होता है हट के धमाकेदार एक म्यूजिक पेश करूं कि आपकी जो तफरी है, आपका जो काम है, वो कह रहे भाई हम फैक्ट्री में मजदूर तबके के लिए आप जिक्र करें, भाई फैक्ट्रीज जितनी भी है जहां जहां मजदूर तबका, वो कहते हैं हम मेहनत कश है भाई, हम क्यों नहीं भाई आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं अलकासिबू हबीबुल्ला। बिल्कुल जी, मेहनत करने वाला अल्लाह का भी दोस्त है। और ये जराह तज़किरा बहुत बहुत खूबसूरत सी बातें आप सबके लिए, हमारे सब सुनने वालों के लिए, हमारे सब लिसनर्स के लिए, और स्पेशली जो इतनी मशक्कत कर रही है, हमें फीडबैक और कॉल्स आ रही है उसका भी जिक्र करते हैं। इससे पहले हमारा टॉपिक अब और क्या, मैंने सस्पेंस रखना बहुत खूबसूरत आप सबके लिए, मेरे लिए, सब सुनने वालों के लिए, वर्ल्ड वाइड जहां मेरी आवाज जा रही, इंसान की तखलीक का मकसद क्या है। अभी मुझे शेर का जी जवाब मिल चुका है जी, एक हमारे रेगुलर कॉलर जो मैनचेस्टर से चौधरी रुखसार अहमद साहब, उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर उसको अभी सीगाए राज में रखती हूं, उसको डिस्क्लोज नहीं करना, और भी कॉल्स लेनी है। इतना ब्यूटीफुल सा शेर, आप कहेंगे लो जी हमें तो वो भूल भी गया, तो भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी चले वो किधर गया है, मेरे पास भी इधर था, तो अभी बातों बातों में जी आ गया है मेरे सामने ये शेर है। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, जिनको नहीं आता वो तलाश सर्च जरा करें, और हर एक जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। बहुत खूबसूरत है टॉपिक हमारा, क्या मकसद है इंसान की तखलीक का, हमारा मकसद हयात क्या है, क्या है भाई हमारा मकसद, क्यों दुनिया में आए हैं,
ठीक है, इसके बारे में बातचीत भी रहेगी, आप भी हमें फीडबैक दें, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, और इससे पहले कि फिर आप कहें बहुत शकील बातें हो गई, खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं, न्यू पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग 2026। आइए जरा स्मार्ट फरमाते हैं।

जी बिल्कुल मजे। सामिन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक सुबह नौ में लेके आई है। म्यूजिक भी आप लोगों का फेवरेट जो है चल रहा है, और इस वक्त मेरे पास जो फरमाइश भेजी गई है, वाओ अमेजिंग, आप खुद सुनेंगे, आप कहेंगे जरा हट के है ये। जी बिल्कुल, ए बड़ा बहुत जरा हट के ते बड़ा दिल छू लेने वाला। जी ताड़ी नजर होने कर दे, बहुत ही खूबसूरत जिया चंगा जिया उन्हें ज्यादा पंजाबी दे लफ्ज जी बोले थे, फिर और तुसी को भी टू मच हो गया। इसलिए फिर वापस बैक टू स्क्वायर हम अभी उर्दू पे फिर आ जाते हैं। जी बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपका इंतजार कर रहा है जी, और मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने जहन को हाजिर नाजर उतनी देर में कर ले और सोचें, हम सब सोचें हमारा जिंदगी में आने का मकसद। अगर इतनी बात जरूर कह देती हूँ इससे पहले, हमारी वेबसाइट bradfordnationradio.co.uk है जी, और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी, और हमारी मोबाइल नंबर 07800599563 है जी। आप कहेंगे कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि हाँ जी, मैं आप पे ये वाजे कर दूं कि चूंकि ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम इसको मजहबी लिहाज से देखें, वैसे तो देखिए हम मजहब और डेली रूटीन लाइफ को दूर एक दूसरे से जुड़ा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन फिर वो जो बहुत हमारा डीप और बहुत ही एक इमोशनल जो होता है और बहुत ही खूबसूरत सा होता है, एक हमारे बिल्कुल टोटली जिसे हम कहते हैं कि अगर हम दुनियादारी से भी उसको थोड़ा सा एक साइड पे रखें कि एक दुनिया क्या करें, कि भाई हम क्या करें, लोगों ने बना दिया ये टर्म कि दुनियादारी है और दीन है, खैर तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो बहुत ज्यादा हमारे पास इस्लामी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, वो भी इंशाल्लाह साथ चलें करेंगे उसमें गुफ्तगू के दौरान, बल्कि वही चलें अब करते हैं और साथ साथ दुनियादारी के साथ चलते हुए क्या मकसद है हमारा। आपके पास बहुत नॉलेज होगा, मुझे बड़ी खुशी होती है इतने महज़ब मुअद्दब बाज़ौक और अहले इल्म लोगों के दरमियान प्रोग्राम करते हुए कि दुनिया के खित्ते से कहां कहां से और पाकिस्तान से मुझे जो कॉल्स आती हैं और उनकी फीडबैक आती है, मैं आप सबको बहुत ज्यादा इसकी आप सबकी ममनून मशकूर और शुक्रिया आप सबका अदा करती हूँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिकॉज आप खुद एक बहुत दानिशमंद हैं, आपके अंदर ये सारा नॉलेज है, वो अट्रैक्ट करता है आपको, और फिर वो हम गिव एंड टेक पॉलिसी भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या ऐसे चलें तो क्या बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा बेहतर होगा। मेरे पास एक फरमाइश बहुत ही खूबसूरत है, मैं चाहती हूं कि अगली नेक्स्ट ब्रेक पर जाने से पहले ये थोड़ा सा हम फरमाइशी सॉन्ग सुन ले। एक तो जिन्होंने फरमाइश किया ऑब्वियसली उनकी भी ये दिली तमन्ना होगी कि जी वो सॉन्ग आए और वो मेहनत करते हुए अपना जो मेहनत में दिल लगा के काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगे, तो हम सबको अच्छा लगना चाहिए। आइए ये फरमाइश जो है पूरी करते हैं और एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। मैं कहती हूं कि वाकई दाद देने को दिल करता है। फरमाइश करने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और जिसने ये सॉन्ग गाया है उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। म्यूजिक अगर ऐसा हो तो वाकई मैं कहती हूं प्रोग्राम को तो चार चांद लगने ही लगने। और हमारी ऑडियंस इतनी खूबसूरत चॉइस की हामिल हो तो वे हम उनको दाद देते हैं। हमें अपने हमारे प्रोग्राम की क्या दाद देंगे, हम तो आपको दाद देते हैं कि आपकी वजह से हमने इतना खूबसूरत सॉन्ग सुना। वाकई वाकई बेहतरीन म्यूजिक जी, बहुत बेहतरीन। क्या करें, कैसे करें कि घड़ी जो है ना हमारी, वो हमें याद कराती है कि चलते हैं हम ब्रेक पर। अभी तो चलने से पहले ये एक जी हमें अभी फीडबैक जी हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त जी, ये मैं देखती हूँ जी इनका क्या आया है। ब्यूटीफुल सॉन्ग हमें पाकिस्तान से श्याम जी ने ज्वाइन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच श्याम जी, आपको मोस्ट वेलकम हमारे प्रोग्राम में। ये खुद इनके प्रोग्राम्स इतने लाजवाब, इतने बेहतरीन कि ये वंडरफुल जिसे कहते हैं ना, एक प्रेजेंटर है हमारे पाकिस्तान में श्याम जी। और ब्यूटीफुल सॉन्ग जी, बहुत शुक्रिया। नैना दा की करा, क्या बात है, लव दिस सॉन्ग। आप क्या, मेरे ख्याल में सबने पसंद किया है। आई लव दिस सॉन्ग इज वेल, आई रियली रियली एंजॉयड दिस सॉन्ग, आई रियली लव दिस सॉन्ग, ब्यूटीफुल एनर्जी और सॉन्ग। अच्छा जी, शामिल होता है वो जी। कह रहे हैं कि जी मेरे हर शो में ये प्रोग्राम, ये हमारे पास से चूंकि व्हाट्सएप का ये जो है नंबर है जी, तो वो हमें पाकिस्तान से इनके जो कमेंट्स हैं, इनके जो फीडबैक है वो बैन अलावामी सतह पर मिलती है जी, और बेहतरीन। और आप सबका जहां जहां दुनिया भर में हमें जिस जिसने ज्वाइन किया हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपका प्रोग्राम को सराहने का शुक्रिया। बल्कि देखिए, आप इतनी खूबसूरत हमें भेज रहे हैं चॉइस और फरमाइश, तो इसकी वजह से सबको ये प्रोग्राम जो है सुनने को मिल रहा है। और वंस अगेन आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और हमारी घड़ी जो हमें लेके जा रही है ब्रेक की तरफ, तो आफ्टर द ब्रेक इससे भी बेहतरीन बेहतरीन नहीं, हर सॉन्ग की अपनी एक होती है, क्या कहते हैं उसका यूनिकपन होता है, हर सॉन्ग यूनिक होता है। लेकिन और भी चलेंगे, ऐसे कह लेते हैं, और भी बहुत से खूबसूरत हमारे पास म्यूजिक नगमात है। और हमारे पास जो हमारे टॉपिक का हम शुरुआत करेंगे, यू विल like that as well. Challenge
1: Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
10: Only the way.
7: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
1: दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज।
1: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN। बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
7: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
7: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
7: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
9: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
0: वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये हमारा भी जो रेडियो का चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM। वाओ जी, हमने भी बड़े बड़े हम आए रोज आप लोग जैसे सराहते हैं और खुद इतने नॉलेजेबल पर्सनालिटीज जो हैं वो सुन रही हैं प्रोग्राम, तो वाकई प्रोग्राम को करने का दिल करता है। और मुझे कॉल मौसूल हुई है जी हमारे स्टूडियो टेलीफोन नंबर पर पाकिस्तान से, तो वो जाहिर बात है कि उनका फिर ये खर्चा भी आता है जो कि हम सेव करना चाहते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है जो उसके ऊपर आप हमें कॉल करके 07800 599 563 पर भी आप हमें ज्वाइन करके जो है वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो एक दूसरे से इल्मी जो होती है गुफ्तगू, मेरा खुद का भी अगर व्हाट्सएप का नंबर हो तो मैं ऐसे डिसेंट और बावकार लोगों को देना पसंद करती हूँ नंबर के, जो वाकई जो है इल्म की जो जितनी भी बातें होती हैं इल्मी अदबी, और इल्मी अदबी ही हम कहें तो बहुत बेहतरीन प्रोवाइडिंग होगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी फीडबैक. बहुत शुक्रिया श्याम जी, आपने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया हुआ है और हमारे जो रेगुलर कॉलर फ्रॉम मैनचेस्टर रुखसार अहमद साहब. और जी अब क्या जी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मुझे कॉल्स आ रही है, फीडबैक आ रहा है कि जी आपके आपका सॉन्ग जो है उसने तो तहलका मचा दिया है. हम शुक्रगुजार क्या, हम शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी रुखसार अहमद साहब का कि इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है वो सबको पसंद आया. और इसी तरह से होता है कि आप हमें चॉइस अच्छी भेजते तो सबको जो है वो पसंद आ जाती है और फिर इस तरह से सिलसिला जो है छाई का कह लें, खूबसूरत गुफ्तगू का कह लें, खूबसूरत म्यूजिक का, तो वो चलता रहता है. जी बिल्कुल सामने क्राम, हमारा टॉपिक जो है मैं उसको भी साथ ले के चलती हूँ. बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के इंसान की हमें दुनिया में जो है हमारा आने का मकसद क्या है. चले मैं ये जो है हमारे कुरान पाक की जो वर्सेस हैं, मैं ये जो है सूरह मुल्क जो है 29वें पारे में है हमारे, तो मैं उसकी जो पहली आयत मुबारक है कि तबारक अल्लज़ी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फिर सब कहते हैं कि जी आप मजहब को दुनिया से बिल्कुल जुदा कर देती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं. चलो मैं क्योंकि बेहतरीन रहनुमाई जो हमारे पास है तो वो कुरान ही है, बेहतरीन है, वही है हमारा सब कुछ, तो उसी से गाइडेंस लेके फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे. जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. पाक है वो जात जिसके कब्जाए कब्जा में सल्तनत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है. ठीक है जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम का भी मानी व मफहूम के मैं पनाह मांगती हूँ शैतान से, शैतान और दूसरे अल्लाह की. देखिए अब जब एक हम खूबसूरत हवाला लेना चाहते हैं तो फिर वो मुकम्मल और कम्प्लीट होना चाहिए. अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान इंतहाई रहने वाला. मैं चूंकि ये जो है हम सब इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि मजहब और दुनिया को हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते. आप कहेंगे कि जी हम इस वक्त म्यूजिक की दुनिया में घुसे हुए हैं, एंटरटेनिंग कर रहे हैं. नहीं, जब सीरियस होने का मामला होता है तो हम सीरियस होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो हमें बिल्कुल एक रिदम में रखता है, एक तनासुब में रखता है. हम जो है वो चाहे एंटरटेनिंग कर रहे हैं तो हमने हदूद नहीं फलांगनी. हम दुनिया के कहीं भी किसी कोने में चले जाएं, हम अगर इन वर्सेस से जो है कुरान पाक की इनसे अगर हम इस्तेफादा हासिल करें तो हम हर जगह के ऊपर देखेंगे कि कामयाब तरीन इंसान है. मकसद क्या है हमारा? कामयाबी हासिल करना दुनिया और आखरत की. एंटरटेनिंग ले रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, हमारा गेट टुगेदर है, फैमिलीज आई हुई हैं सब घर में, वो जिसे कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है, ऊधम मचा हुआ है और उसमें भी एक चाहत है, उसमें भी एक अपनाइयत है, उसमें भी एक हुस्न है. तो ये सारी खूबसूरतियां रानाइयां जिंदगी की जो है जिंदगी को और खूबसूरत बना देती हैं. जी अब क्योंकि ये बहुत वसी नजर जिसे कहते हैं टॉपिक है जी, इसलिए मैं साथ साथ आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनका भी सहारा ले रही हूं कि देखना ये है कि हम जहां कहीं भी हैं, दुनिया के किसी मुल्क में, यूरोप में बैठे हैं, एशिया में हैं, जहां कहीं भी हैं, हमने ये जहन में बात जरूर रखनी है हमारा मकसद हयात क्या है. दूसरों को खुश कर देना, وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے, اللہ پاک کے نہیں ہیں کم, بہت فرشتے ہیں اللہ پاک کے پاس. انسان کا یہی تو رکھ دیا کہ اس میں نفس بھی ہے. نفس, اچھا میں کل پروگرام سن رہی تھی یہ ریڈیو کا, اس پہ وہ بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت بات مجھے لگی, مجھے کالر کا نام بھول گیا. انہوں نے کہا کہ جی نفس مطمئنہ کی ہم نے کو لے کے جانا ہے دنیا سے. بہت ہی خوبصورت مجھے بات لگی ان کی کہ واقعی ہم کہتے, وہ کہتے کہ جی ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا مجھے سرسری سا یہ سننے کو ملا سینٹینس مے بی کہ میرا وہ الیوژن جسے کہتے ہیں وہ ہو, لیکن الیوژن ہو, لیکن میں نے خود بھی اس طرف نظر دوڑائی. ہم اکثر یہی دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں, اور بہت خوبصورت دعا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ نفس مطمئنہ اور نفس ہمارا, اور تین میرا خیال نفس ہے, ایک میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. کہ پھر ہم نے جہاں کہیں بھی ہے نفس ہمارا کی تباہ کاریاں جو ہے نا ان کو مد نظر ضرور رکھنا ہے. یہ ہے علم اور یہ ہے نالج. چاہے ہم انٹرٹیننگ پروگرام کر رہے ہیں, چاہے ہم بہت کوئی ریلیجیس کہ بالکل ہی ریلیجیس پروگرام ہے, اس میں کوئی بھی ہم اس طرح کی چلیں یا میوزک وغیرہ کا کوئی سہارا نہیں لے رہے. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے. یہ بھی مجھے کل گفتگو سننے کو ملی, لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گی. میں, ہم اور آپ اس وقت یہ دیکھتے ہیں بیٹھ کے کہ کسی بھی دنیاوی, چلے پہلے اسے ہم کہتے ہیں بھی دنیا داری بھی کوئی چیز ہے, تو چلے دنیا داری کو دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے لین دین میں, ہمارے لین دین میں تناسب ہے, ہماری بول چال, ہماری گفتگو میں تناسب ہے. بہت مجھے دیکھیں, میں اب واچ کرنے لگ, سننے لگ گئی, لسن کرنے لگ گئی ہوں یہ ریڈیو کے پروگرامز کے جس میں پھر وہ چل رہی تھی بات. بہت ہی ایک کہ جی میں نے ایک اس سے بھی پہلے پروگرام کیا کہ ہم دوسروں کو جو تنقید کا آج کل جی لوگوں نے آف لاتا, وہ کون ہے لوگ بھائی؟ وی آل آر دا پارٹ آف آور سوسائٹی, ہم سب پارٹ ہے سوسائٹی کا حصہ, ہم اپنے آپ کو نگلیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اب بات آپ کی, جنہوں نے یہ پروگرام سنا ہے وہ یقیناً ان تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور چلے اوور آل بھی بات کرتے ہیں, بہت سے ایسے ہمیں جی صاحبان صاحبات سے بات کرنے کو ملتی ہے کہ دوسروں کو کریٹیسزم کرنا از اے ویری ایزی ٹاسک, لیکن اپنے کو بھی بات ہم کرتے, کیا ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم نے, ہم سب شامل ہو جاتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. یہ مجھے اچھا لگتا ہے, یہ کیا ہم کرتے ہیں, کیا ہم سوچتے ہیں اپنے, وہی پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک انگلی دوسروں کی طرف کرو گی تو تین آپ کی طرف ہے. تو یہ جو ہے کیا ہمارا مقصد دوسروں کو, پھر یہاں پہ انسانیت, ہیومینٹی کمز فرسٹ, ہیومینٹی آ جاتی ہے کسی بیس پہ نہیں, رب العالمین رحمت للعالمین. اور یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس کو مد نظر رکھ لیتے ہیں نا کسی بھی جگہ, کسی, چلے آپ دنیاوی کی دنیا داری بھی کوئی چیز ہے کہ آپ دنیا داری ہی کے لحاظ سے لے لیتے, کبھی بھی قدم جو ہے ڈگمگائیں گے نہیں جب دوسروں کی فیلنگز کا ہم خیال رکھیں گے. بہت میں کہتی ہوں کہ مجھے, میری جو وسعت نظری بھی جو ہے, میں یہاں پہ بھی کچھ بیٹھ کے نا جب اوور آل بات کرتے ہیں تو وہ پھر خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس زاویے میں, کس اینگل سے چل رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ سب کا؟ آپ سب بھی ہمیں جوائن کر کے گفتگو میں بتا سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پہلو جو ہے ان کو کیسے اپلائی, کس طرح سے اپنے رولز ریگولیشنز جو ہے وہ, تاکہ میں آپ کو, میں نے ہمیشہ کہا ہے عائشہ اختر کا پروگرام جو ہوتا ہے انفارمیٹیو افیکٹیو इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग. एंटरटेनमेंट जी वो कहते हैं कि जी हम देखें हार्ड वर्क प्लीज अर्शद जी हमारे लिए कोई खूबसूरत से सॉन्ग. जी बिल्कुल, मैंने कहा जी हम पेश करते हैं आपके लिए प्रोग्राम है और साथ साथ अगर हमें इन्फॉर्मेशन बहुत खूबसूरत मिल रही है तो मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन लम्हात ही और कोई नहीं होते. अगर मैं भी किसी महफिल में जाती हूँ, मैं भी लोग दूसरों को सुनती हूँ और फिर मैं कहती हूँ वाह आज तो तबीयत हल्की फुल्की हो गई. क्या ख्याल है आप सबका, जरूर बताइएगा. जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े रहे और एक खूबसूरत सा ही और कोई नहीं होते. अगर मैं भी किसी महफिल में जाती हूँ, मैं भी लोग दूसरों को सुनती हूँ और फिर मैं कहती हूँ वाह आज तो तबीयत हल्की फुल्की हो गई. क्या ख्याल है आप सबका,

0: Village, 93 Hudson Grange Road, Bradford 7-414-760.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा।

0: जी क्या आज बेल्स जाने का इरादा है?
1: जी हाँ, बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
0: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622। लव
1: फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

जी बिल्कुल, मजसावी निक्राम ब्राफरेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग एक खूबसूरत सा प्रोग्राम। मैं इसलिए खूबसूरत कहूंगी कि टॉपिक आज का आप बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज करती हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, जो हमारा और आपका साथ है 10 बजे से 1 बजे तक होगा। तो वैसे ये आपस की बात है कि जब हम कहते हैं 10 से 1 बजे तक, तो थोड़ा सा अरे घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सफर रखेंगे। जब जहाज जो है प्लेन एरोप्लेन चला जाता है 22 फीट 22 फीट की बुलंदी पे जब जाता है, तो एयर होस्टेस जो है वो अनाउंसमेंट करती है। मेरा ख्याल है इतना ही फिगर कमोबेश होगा, चले कुछ कमी बेशी होगी तो आप खुद उसको अकाउंटिंग को जो है ना सही काउंट कर लीजिएगा, अकाउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमोबेश जब इतनी बुलंदी पे जहाज आता, तो एयर होस्टेस जो है, जब खवातीन हजरात इस वक्त हम 22,000 फीट की बुलंदी पर सफर कर रहे हैं, तो जो बड़े नाजुक दिल होते कहते हैं बयान करना कोई जरूरी सी वो बताना जरूरी था, चुप रहती हम चुप करके बैठे हैं, डराती क्यों? तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी ये डराने वाली ही ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी बात नहीं है। आपका सफर इतना अच्छा रहेगा, इतना खूबसूरत कि आप खुद कहेंगे वाओ, अमेजिंग एंटरटेनमेंट, होपफुली इंशाल्लाह। तो हमारी वेबसाइट जो है वो brafrationradio.co.uk है, उसे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। हमारे और जो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है हमारे मोबाइल के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है 07800599563। बहुत कुछ अब याद आ रहा है, धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि सॉन्ग जो है एक इस यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये रोमांटिक सॉन्ग 2026 का है, ब्यूटीफुल है जी, पंजाबी सॉन्ग है। तो मैं क्या थोड़ा सा हट के, हमेशा ही तरह आयशा का मकसद होता है हट के धमाकेदार एक म्यूजिक पेश करूं कि आपकी जो तफरीह है, आपके जो काम है, वो कह रहे भाई हम फैक्ट्री में मजदूर तबके के लिए आप जिक्र करें, भाई फैक्ट्रीज जितनी भी है जहां जहां मजदूर तबका, वो कहते हैं हम मेहनत कश है, भाई हम क्यों नहीं, भाई आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं अलकासिबू हबीबुल्ला। बिल्कुल जी, मेहनत करने वाला अल्लाह का भी दोस्त है। और ये जरा तज़किरा बहुत बहुत खूबसूरत सी बातें आप सबके लिए, हमारे सब सुनने वालों के लिए, हमारे सब लिसनर्स के लिए, और स्पेशली जो इतनी मुशक्कत कर रही है, हमें फीडबैक और कॉल्स आ रही है उसका भी जिक्र करते हैं। इससे पहले हमारा टॉपिक अब और क्या, मैंने सस्पेंस रखना, बहुत खूबसूरत आप सबके लिए, मेरे लिए, सब सुनने वालों के लिए, वर्ल्ड वाइड जहां मेरी आवाज जा रही, इंसान की तखलीक का मकसद क्या है। अभी मुझे शेर का जी जवाब मिल चुका है जी, एक हमारे रेगुलर कॉलर जो मैनचेस्टर से चौधरी रुखसार अहमद साहब, उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर उसको अभी सीगाए राज में रखती हूं, उसको डिस्क्लोज नहीं करना, और भी कॉल्स लेनी है। इतना ब्यूटीफुल सा शेर, आप कहेंगे लो जी हमें तो वो भूल भी गया, तो भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी चले वो किधर गया है, मेरे पास भी इधर था, तो अभी बातों बातों में जी आ गया मेरे सामने ये शेर है, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, जिनको नहीं आता वो तलाश सर्च जरा करें, और हर एक जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, बहुत खूबसूरत है टॉपिक हमारा।
क्या मकसद है इंसान की तखलीक का। हमारा मकसद हयात क्या है, क्या है भाई हमारा मकसद, की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद की मकसद।

ठीक है, इसके बारे में बातचीत भी रहेगी। आप भी हमें फीडबैक दें हमारे प्रोग्राम में, प्रोग्राम में शामिल के फिर आप कहें

बहुत सकील बातें हो गई, खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं, न्यू पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग 2026। आइए जरा समात फरमाते हैं।

जी बिल्कुल मजे। सामईन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक सुबह नौ में लेके आई है। म्यूजिक भी आप लोगों का फेवरेट जो है चल रहा है, और इस वक्त मेरे पास जो फरमाइश भेजी गई है, वाओ अमेजिंग, आप खुद सुनेंगे, आप कहेंगे जरा हटके है ये। जी बिल्कुल, ए बड़ा बहुत जरा हटके ते बड़ा दिल छू लेने वाला। जी ताड़ी नजर होने कर दे, बहुत ही खूबसूरत जिया चंगा जिया उन्हें ज्यादा पंजाबी दे लफ्ज जे बोले ते फिर और तुसी कहोगे टू मच हो गया। इसलिए फिर वापस बैक टू स्क्वायर हम अभी उर्दू पे फिर आ जाते हैं। जी बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपका इंतजार कर रहा है जी, और मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने जहन को हाजिर नाजर उतनी देर में कर ले और सोचे, हम सब सोचे हमारा जिंदगी में आने का मकसद। अगर इतनी बात जरूर कह देती हूँ, उससे पहले हमारी वेबसाइट brafreshradio.co.uk है जी, और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी, और हमारी मोबाइल नंबर 07800599563 है जी। आप कहेंगे कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि हाँ जी, मैं आप पे ये वाजे कर दूं कि चूंकि ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम इसको मजहबी लिहाज से देखें, वैसे तो देखिए हम मजहब और डेली रूटीन लाइफ को दूर एक दूसरे से जुड़ा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन फिर वो जो बहुत हमारा डीप और बहुत ही एक इमोशनल जो होता है और बहुत ही खूबसूरत सा होता है, एक हमारे बिल्कुल टोटली जिसे हम कहते हैं कि अगर हम दुनियादारी से भी उसको थोड़ा सा एक साइड पे रखें कि एक दुनिया क्या करें, कि भाई हम क्या करें, लोगों ने बना दिया ये टर्म कि दुनियादारी है और दीन है, खैर तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो बहुत ज्यादा हमारे पास इस्लामी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, वो भी इंशाल्लाह साथ चलें करेंगे उसमें गुफ्तगू के दौरान, बल्कि वही चलें अब करते हैं और साथ साथ दुनियादारी के साथ चलते हुए क्या मकसद है हमारा। आपके पास बहुत नॉलेज होगा, मुझे बड़ी खुशी होती है इतने महज़ब मुअद्दब बाज़ौक और अहले इलम लोगों के दरमियान प्रोग्राम करते हुए कि दुनिया के खित्ते से कहां कहां से और पाकिस्तान से मुझे जो कॉल्स आती हैं और उनकी फीडबैक आती है, मैं आप सबको बहुत ज्यादा इसकी आप सबकी ममनून मशकूर और शुक्रिया आप सबका अदा करती हूँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिकॉज आप खुद एक बहुत दानिशमंद हैं, आपके अंदर ये सारा नॉलेज है, वो अट्रैक्ट करता है आपको और फिर वो हम गिव एंड टेक पॉलिसी भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या ऐसे चलें तो क्या बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा बेहतर होगा। मेरे पास एक फरमाइश बहुत ही खूबसूरत है, मैं चाहती हूं कि अगली नेक्स्ट ब्रेक पर जाने से पहले ये थोड़ा सा हम फरमाइशी सॉन्ग सुन ले। एक तो जिन्होंने फरमाइश की है ऑब्वियसली उनकी भी ये दिली तमन्ना होगी कि जी वो सॉन्ग आए और वो मेहनत करते हुए अपना जो मेहनत में दिल लगा के काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगे, तो हम सबको अच्छा लगना चाहिए। आइए ये फरमाइश जो है पूरी करते हैं और एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं।

0: بات ہے جی, کیا بات ہے. میں کہتی ہوں کہ واقعی داد دینے کو دل کرتا ہے. فرمائش کرنے والے نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, اور جس نے یہ سانگ گایا ہے اس نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. میوزک اگر ایسا ہو تو واقعی میں کہتی ہوں پروگرام کو تو چار چاند لگنے ہی لگنے, اور ہماری آڈینس اتنی خوبصورت چوائس کی حامل ہو تو وہی ہم ان کو داد دیتے ہیں. ہم نے آپ ہمیں اپنے ہمارے پروگرام کی کیا داد دیں گے, ہم تو آپ کو داد دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے اتنا خوبصورت سانگ سنا. واقعی واقعی بہترین میوزک جی, بہت بہترین. کیا کریں, کیسے کریں کہ گڑی جو ہے نا ہماری وہ ہمیں یاد کراتی ہے کہ چلتے ہیں ہم بریک پر. ابھی تو چلنے سے پہلے یہ ایک جی ہمیں ابھی فیڈ بیک جی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اس وقت جی, یہ میں دیکھتی ہوں جی ان کا کیا آیا ہے. بیوٹیفل سانگ ہمیں پاکستان سے شام جی نے جوائن کیا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ شام جی, آپ کو موسٹ ویلکم ہمارے پروگرام میں. یہ خود ان کے پروگرامز اتنے لاجواب, اتنے بہترین کہ یہ ونڈرفل جسے کہتے ہیں نا, ایک پریزنٹر ہے ہمارے پاکستان میں شام جی. اور بیوٹیفل سانگ جی بہت شکریہ. نینا دا کی کراں, کیا بات ہے, لو دس سانگ. آپ کیا, میرے خیال میں سب نے پسند کیا ہے. آئی لو دس سانگ از ویل, آئی ریئلی ریئلی انجوائڈ دس سانگ, آئی ریئلی لو دس سانگ, بیوٹیفل ایور جی. اور سانگ اچھا جی شامل ہوتا ہے وہ جی, کہہ رہے کہ جی میرے ہر شو میں یہ پروگرام, یہ ہمارے پاس سے چونکہ واٹس ایپ کا یہ جو ہے نمبر ہے جی, تو وہ ہمیں پاکستان سے ان کے جو کامنٹس ہیں, ان کے جو فیڈ بیک ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ملتی ہے جی, اور بہترین. اور آپ سب کا جہاں جہاں دنیا بھر میں ہمیں جس جس نے جوائن کیا ہوا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اور آپ کا پروگرام کو سراہنے کا شکریہ. بلکہ دیکھیں آپ اتنی خوبصورت ہمیں بھیج رہے ہیں چوائس اور فرمائش, تو اس کی وجہ سے سب کو یہ پروگرام جو ہے سننے کو مل رہا ہے. اور ونس اگین آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اور ہماری گھڑی جو ہمیں لے کے جا رہی ہے بریک کی طرف, تو آفٹر دا بریک اس سے بھی بہترین بہترین نہیں بھائی, ہر سانگ کی اپنی ایک ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کا یونیک پن ہوتا ہے, ہر سانگ یونیک ہوتا ہے. لیکن اور بھی چلیں گے ایسے کہہ لیتے ہیں, اور بھی بہت سے خوبصورت ہمارے پاس میوزک نغمات ہیں. اور ہمارے پاس جو ہمارے ٹاپک کا ہم شروعات کریں گے, یو ول like that as well. Challenge
1: Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
7: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
6: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹر گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
7: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
6: فرسٹ چوائس
7: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
6: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
7: 01274317644.
8: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
9: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
10: Pune Dubai
7: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
1: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज।
1: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
7: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
1: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN। बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए
0: 07414-26008। तो कभी किसी ने नहीं गाता, हमने कभी ये नहीं सोचा था हम दर्दारी संभालेंगे। नर्स कहेगी कभी कभी कोई लिख देती थी, बस डॉक्टर से नीचे नहीं उतरना। और हर किसी से पूछो। और मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ी मजे की बात है। और मैं चाह रही हूँ मजे मजे की बातें सुनाते हुए हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ता जाए। हम जब अपने अल्लाह याती देव में ब्रादरान की तरफ बिशा जाहिर बात उनसे बचे होते थे तो फॉर्म फिल करवाने आते, भाई प्लीज फॉर्म फिल कर दो ना। तो हाँ जी, तो क्या बनना है? उन्होंने कहना बस इस्लामियात का लिख दे, होम इकोनॉमिक्स लिख देना। और हम कहते होम इकोनॉमिक्स क्या है? अब दिस इकोनॉमिक्स है ये, अब उसको पता चल रहा है। लेकिन बच्चे ने वो हमारे यूजुअली आपको पता है कि खानेदारी करवाते थे डिफरेंट, देखते कि किसने, आपको बहुत कुछ पता होगा इस बारे, इसकी तफसील में क्या जाऊं। और कुछ वो जैसे कहते हैं हम यहाँ भी बोलते हैं चीकी लफ्ज के, वही वो जी घर से पका के ले आती है और उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती कि वाह, टीचर उनको हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता, हम बड़ी वो बाअदब बाअसूल के तरीके पे हम वहां पे खाना बना रहे हैं। हमारी सिस्टर्स हमारे साथ में खड़ी होती, बड़ी ये क्या करेगी तो वो सारी हेल्प करवा देती चुपके से बैठ के। बड़ा खूबसूरत दौर, बहुत ही अनमोल, जो कि आ नहीं सकता। तो खैर फिर वो इसी तरह से हमें तो ये मतलब दिया जाता। तो फिर हम कहते अब मैं अपना एम ऑफ लाइफ ये लिखूं कि मैं होम इकोनॉमिक्स पढ़ के मैं क्या करूंगी इसको, तो तब समझ नहीं आती थी कि खुदा की बंदी ये तो तुम बहुत अच्छी बन जाओगी, एक तुम अपनी ड्यूटीज अपने बहुत इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन बच्चे होते हैं ना, बस डॉक्टर से नहीं हिलना, हमने तो बंदे क्योंकि डॉक्टर ये करता है डॉक्टर वो करता है खुदाया अब मैं क्या करूं। तो फिर कभी कभी आ जाता था कि चले टीचर बनना है, तो घर वालों ने क्या पूछना है कि क्या बनना है। देखिए बहुत ही बेहतरीन चुटकला है ये, बड़ा अच्छा लगता है। जराहे तस्करा बात छिड़ गई है तो किसी ने पूछना, वो घर वालों ने बड़े वो मजाक के मूड में होते थे ना, बस छेड़ना है उन्होंने तो कहना क्या बनना है जी, मैंने कहना उस्तानी, वो बस जल्दी में निकल मस्तानी, हमने पीछे मर जाना, तुमने कहा क्यों ऐसे नहीं तो ये बातें जो होती है ना, ये इस नॉट पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम, लेकिन मुझे याद आ जाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी खूबसूरत सी बातों को दोहराना और आपसे. और शायद मुझे अब तो मुझे पता चल रहा है कि रेडियो में बातें करते करते ना मुझे बाय बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि मैं ज्यादा बातें ना करूं, वरना बात कुछ कुछ ऐसी नजरें होती हैं कि आप कब चुप करेंगी. और खैर चले छोड़ेंगे, तो वो भी इसलिए कि देखे कभी कभी मौका मिलता है बात करने का. खैर इसी बारे कि आपके पसंदीदा और फेवरेट हम सॉन्ग के ऊपर जाएं जी, मेरे पास एक जो नामवर शख्सियात हैं उनके कुछ बहुत ही चुटकुले हैं मेरे पास, तो क्या ख्याल है कि आयशा अख्तर के छोड़े आप क्या मेरे चुटकुले सुनने आप आए बढ़ते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है. देखें जी, अब ये बात किसने कही है बाद में बताती हूं, बात सुन लें. दुनिया में कामयाब जोड़ा सिर्फ जुराबों का है कि एक के बिना दूसरा अधूरा होता है. क्या खूबसूरत बात है, किसने कही है, वस्तन सर हुसैन तारड़ साहब ने. दूसरी मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत बात कह लें, चुटकुला कह लें, बहुत खुश होंगे वैसे हमारे ब्रादरान साहब, हमारे मर्द हजरात, ये बहुत ही एक बेहतरीन सा चुटकुला मेरे पास है कि मुझने और मेरी बीवी में बड़ा अजीब सा इत्तफाक है, नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून मुझे मिलता है. ये किसने लिखा है जी, इब्ने इंशा ने. इंशा जी उठो अब कुछ करो. तो ये इब्ने इंशा ने लिखा है, क्या ख्याल है जी आपका. आगे मेरे पास एक चुटकुला है जी, वो कहते हैं कि जी मैं खाने का अदब सिर्फ सरबराहों और वजीरों को पाकिस्तान में, सॉरी मैं ऐसे पाकिस्तान, देखे अब बात हो रही है, हम कोई बुरी बात तो नहीं कह रहे, एक यहाँ पे फ्रीडम है बात करने का, तो फ्रीडम के लिहाज से बात कर लेंगे कि पाकिस्तान में खाने का अदब सिर्फ सरबराहों और वजीरों को आता है, वो खामोशी से खाते हैं. किसने बात कही है ये, देखिए मैंने नहीं कही, आप मेरे ऊपर फतवे नहीं सादर कीजिएगा, ये अनवर मकसूद साहब ने कही ये बात, क्या ख्याल है. अच्छा जी, आगे मेरे पास है एक खूबसूरत सी बात कि हम इतने अमन पसंद हैं कि हमारे सबसे बड़े अखबार का नाम जंग है. क्या ही बात है, ये किसने लिखी है जी, ये लिखते हैं मुश्ताक अहमद यूसफी साहब. चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर बोला जाता है. कौन हो सकते हैं, खादिम सादात पाकिस्तान, सोचिएगा ये हकीकत है जी. आगे है जी, हमारे बाचा खान ने फरमाया है कि हिसाब अगर जज से मांगो तो तौहीन अदालत, अगर मौलवी से मांगो तो काफिर, और अगर जर्नैल से मांगो तो गद्दार. क्या बात है जी, हमने अपना दामन जो है एक साइड पे रखा और आपको बड़े खूबसूरत से ये चुटकले जो है सुनाए. बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है, मैंने तो एज इट इज आपको सुना दिए, वैसे वाकई ये हकीकत भी है. सोचिएगा इस बात में, इस बात के बारे में. सलाम इकराम जी, इस वक्त हमारे पास एक खूबसूरत सा सॉन्ग है, आप बताइएगा आप सबके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत पसंद करेंगे. आइए खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं.

0: TAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15-16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रैडफोर्ड में जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड रोड फेस्टिवल
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 फुटलैंड ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: आज बेल्स जाने का इरादा है?
1: जी हाँ, बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी न्यू स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर सप्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।

जी बिल्कुल सामईन इकराम, हमारे पास इस वक्त एक होल्ड किया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, आइए ये सुनते हैं, फिर गुफ्तगू को हम अपने इख्तितामी मराहल में शामिल करेंगे।

जी बिल्कुल सामईन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1430 AM पर इतना खूबसूरत आज का प्रोग्राम रहा। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये पल जो है ये सदियों पर मुहित हो जाए, और स्पेशली जब हम मिल के सब एक अच्छी बातों को तश्कील देते हैं, अच्छे डगर पर चल रहे होते हैं और एक ऐसा सुहाना सा मंजर जो है क्रिएट हो जाता है कि हम उसको आंखों से ओझल नहीं होने देते। हम चाहते हैं कि ये लम्हे जो हैं हमारी जिंदगी पर मुहित हो जाएं और पल दो पल का सफर जो है वो सदियों पर मुहित हो जाए। क्या ऐसा है? ऐसा ही सोचते हैं वो इस सेंस में कि जो अच्छे खूबसूरत पल होते हैं ऑब्वियसली सबको बड़ी तस्कीन देते हैं, और यही कोशिश होती है कि जब भी प्रोग्राम आपके साथ मैं करूं तो ये पल और जितने लम्हात हैं वो खुशियों में, खूबसूरतियों में ढल जाए इंशाल्लाह। दुआएं हैं और हमेशा दुआओं के हिसार में रहते हैं। मजीद गुफ्तगू से पहले हमारी वेबसाइट prefrationradio.co.uk है और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर जो कि आज खूब इस्तेमाल हुआ, बहुत अच्छा लगा और अच्छी सेंस हुए, 01274306677, और दूसरा नंबर जो है वो 07800599563, और बहुत ही उम्दा और म्यारी मुझे खुद को जो है गुफ्तगू आप सबकी सुनने को मिली, और स्पेशली पाकिस्तान से हमें जो कॉलर्स ने ज्वाइन किया, स्पेशली श्याम जी ने, और फिर हमें चौधरी रुखसार अहमद साहब। तो अब मेरा ख्याल है कि प्रेफरेशन रेडियो का एक टीम का हिस्सा जिसे कहते हैं ना, वो बन गई है कि वो खुद अपनी जो उसमें फीडबैक के साथ साथ नॉलेज जो है वो फ्राहम कर देते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया किस्म की होती है। और फिर देखिए, ये तो हमारा मतलब चले कि हम यूके साइड की तरफ से देखते हैं, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पर लाइक पाकिस्तान से हमें कॉल किया जाना और वहां पे उन्होंने हमें, मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ जी आपको, अगर आप सुन रहे हैं श्याम जी के, आपने जाहिर है कि उन्होंने उनकी कॉस्ट लगी है उस कॉल के ऊपर, तो ये एक बहुत ही ज्यादा मैं समझती हूँ कि उनकी ग्रेटनेस है कि वो खुद भी इतने अच्छे प्रेजेंटर हैं और फिर वो शामिल होना और उनकी खूबसूरत गुफ्तगू रही, और ये फिर बाकी ओवरऑल जो है जहां कहीं से भी हमें हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम ने सुना सराहा, ये हमारे लिए ऑनर की बात है, स्पेशली प्रेफरेशन रेडियो के लिए कि हम जो आए दिन इसमें खूबसूरत जो है प्रोग्रेस हो रही है और आपको नजर भी आ रही है वो प्रोग्रेस, करीब एक बहुत ही खूबसूरत गैदरिंग की शक्ल में वो मेरा क्लू आप समझ गए होंगे। इतना ही समटाइम्स मैं क्लू देती होती हूँ और कहती हूँ अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है तो वो भी आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे आमीन तो नजर आ जाएगा जी। जो कोई जो जैसी कारकर्दगी करता है सामने आ जाती है मंजरे आम पे, तो कोशिश हमेशा यही हम सबको करनी चाहिए कि हम अच्छे कामों में मुलव्वस रहें और अच्छी खिदमात अपनी जो है वो सोसाइटी में अंजाम देते रहें। हमारा वजूद जो है वो दूसरों के लिए आसानियां तकसीम करने वाला हो, हम आसानियां तकसीम करें और खुद भी अल्लाह ताला में आसानियां अता फरमाए, और नफ्से मुतमईना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नफ्से मुतमईना पर हम जो है उसकी जानिब अपने सफर को जब बढ़ाएं तो फिर हम सोचें कि उसके लिए क्या लवाजमात जो है वो दरकार है। जब लवाजमात जो दरकार शुदा है उनके ऊपर हम फोकस्ड हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें नफ्से मुतमईना इंशाअल्लाह बिल जरूर अल्लाह ताला अता करेगा, और ये बहुत जरूरी है दोनों जहान में कामयाबियां पाने के लिए। जी यही
कोशिश की है कि छोटी सी आपके आगे रखी और कोशिशें छोटी हो और लेकिन उनमें जो कोड मैंने की है वो बहुत ग्रेट और वही हमारी जिंदगी का मासल जो कुरान पाक से हमने ली वर्सी वो हमारी जिंदगी का मासल है जी। और फिर हम इंसानियत का ह्यूमैनिटी का दर्स हमने कहाँ से सीखा, हमारी कुरान ने ही हमें सिखाया कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया और इंसानी जान कितनी कीमती है। और फिर हमने ये भी देखा और साथ साथ फीलिंग्स और हमारे मामलात हमारे जज्बात एहसासात थिंकिंग और वर्ड्स ऑफ माउथ और क्या क्या है हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ, आज इसके ऊपर सीर हासिल गुफ्तगू रही। आई होप कि आप लोगों ने सबने पसंद किया। मैं अब अल्लाह हाफिज भी कहती हूँ, बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अल्लाह हाफिज कहती हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक फरमाशी सॉन्ग आया हुआ है जी के उसके बारे में जी ये खुद ही सुन लें आप, ये सॉन्ग प्यारा है। इसी पर इत्तफाक करती हूँ, ख़त्म करती हूँ अपने प्रोग्राम को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अपना डेरों डेर ख्याल रखिएगा। अशा अख्तर को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।

0: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
2: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477277। दुबई ज्वेलर्स।
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
4: Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ़ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन था
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काकी की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवत लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज
8: यॉर्कशायर सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ब्रेकफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर। यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह बाप जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गजल उसने छेड़ी की इज्जत तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुश आमदीद कहेंगे।

अब हो जाए तारुफ उन मेहमानों का जो हमारी बज़्म में तशरीफ ला चुके हैं। हमारे हमराह मौजूद हैं वकार साहब, आप वेकफील्ड से तशरीफ लाए हैं। रियासत साहब हदफील्ड से मौजूद हैं। रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, सुमेरा ब्रैडफोर्ड 3 से हमारी बेटिया, डॉक्टर माहरुख साहिबा ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, भगत सिंह साहब मौजूद हैं लीज से। इन तमाम अहबाब ने आप तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है।

0: और दोस्तों ये थी पसंद हमारी हसीन जोड़ी जो कराची से आकर हमारे प्रोग्राम की दिनों तो तौकीर बढ़ाती है, जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा की। कमर्शियल के बाद हम आपको मिल्स बढ़ा दिए चलेंगे जहां हमारी बावर्ची खाने की रानी सुमैरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से एक तोहफा अपनी प्यारी प्यारी कजन्स की नज़र करना चाहती हैं। सुमैरा कहती हैं कि आज चूजा चावल और कढ़ी बनाई है। वाह वाह वाह वाह वाह मज़ा आ रहा है भाई, हमें भी बहुत। और कहती हैं कि साथ ही साथ मैंने चटनी भी बनाई है जो आपकी पसंद है, मैं आ रहा हूँ। जीते रहो बेटा।
1: AsianRadio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is.
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में,
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे।
7: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीड्स रोड फेस्टिवल।
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
7: आप भी
6: जरूर आइएगा। उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
1: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, 274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है। 5 बजे तक हमारी नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के 4 कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। अभी चंद लम्हे पहले हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब बनले से तशरीफ लाए हैं। कल उनका कहना है कि उन्होंने बहुत ट्राई किया और फोन नहीं मिला। यहाँ थोड़ी देर के लिए हमारा फोन मुनक़ हुआ था, लेकिन हमने इसी पर तमाम पैगाम वसूल किए और उसकी वजह मैं बता दूं, ये फोन जरा नया है तो इसकी एक तार शर्मिंदा हो गई थी। जब मुझे मेरे मोबाइल पर फोन करके हमारे लिसनर्स ने बताया कि हमारी कॉल नहीं पहुंच रही है अब तक, हम ट्राई कर रहे हैं, तो फिर मैंने जरा इसके कान मरोड़े और उसके बाद कॉल आना शुरू हो गई। तो कभी कभी सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता, उन्हें टेढ़ा करना पड़ता है। इसी तरह कल फोन का अहवाल था, लेकिन हाँ, हमारे जाने से तकरीबन आधा घंटे पहले हमने वो चेक किया था और

ठीक हो गया। शकील भाई, आपकी शिकायत बजा है, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ अरसे के लिए ये आउट ऑफ ऑर्डर था। ज़रा नया फ़ोन है तो ज़रा नखरे भी करता है कभी कभी। हम भी कहते हैं चलो कभी कभी तो करते हो, कर दिया करो। हमें इनकी वो उंगली टेढ़ी करनी आती है जिससे घी निकलता है। हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और आपका मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन और नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं हस्ब वादा ब्रेडफोर्ड 3 से हमारी बाटी खाने की रानी प्यारी सी बिटिया, जिन्होंने आज चूजा चावल और कढ़ी और चटनी बनाई है। क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि मुझे चटनियाँ बहुत पसंद हैं, कहती है हमने वही ट्राई की है, हमारे यहाँ बनती तो नहीं है। टमाटर, हरा धनिया, जीरा, मिर्चें, हरी मिर्चें, इसकी इन्होंने चटनी बनाई है और कहती है अब मैंने बनाना शुरू की है, बहुत अच्छी लगती है, बस खाइए। मेरे पास तो बनी बनाई अभी रखी हुई है, मैं एक बार बना लेता हूँ और फिर रखी रहती है। जीती रहो मेरा बेटा, और दुआओं का बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी कजन्स का तोहफा उनकी नज़र कर रहे हैं जो हमें इस वक्त मिडिल्स वरा में सुन रही हैं, और आप सबको हमारी तरफ से ढेर दुआएं, प्यार और मोहब्बत भरा सलाम। आपकी पसंद लेकर हाजिर हूँ जिसे आपके लिए मुंतखब किया है आपकी प्यारी सी कजन सुमेरा ने ब्रैडफोर्ड 3 से। जीते रहिए, अल्लाह आप सबकी ये मेल मोहब्बत यूँ ही कायम और दायम रखे और नजरे बद से बचाए। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे खारियां गुजरात पाकिस्तान, जहां परदेसी मजीद साहब एक गीत सुनना चाहते हैं, उनका तोहफा उनकी नजर करेंगे। अभी तो हम चल रहे हैं आपको लेकर मिडिल्स वरा, अहले मिडिल्स वरा को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अब हम आपको लिए चल रहे हैं खाड़िया गुजरात पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं हमारे खूबसूरत लिसनर परदेसी मजीद साहब, जिन्होंने आज आगाज प्रोग्राम में ही अपना ये पैगाम भेजा था और गीत भी उन्होंने पहले कुछ और बताया था, अब और कुछ सुनना चाहते हैं जो हमने क्यों कर लिया है। और बतौर खास शकील साहब, रिजवान साहब, चौधरी रुखसार अहमद साहब और नवीद साहब की खिदमत में उन्होंने खुसूसी सलाम भी पेश किए हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी ढेर दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। और अब हम चल रहे हैं खाड़िया गुजरात पाकिस्तान और परदेसी मजीद साहब का तोहफा उनके नाम कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे बंडले, जहां मौजूद हैं हमारे काबिल सदर एहतराम लिसनर जनाब शकील साहब और महजूज हो रहे हैं गजल उसने छेड़ी से। तो चलते हैं पहले खाड़िया गुजरात पाकिस्तान।

पर ऋषि मजी साहब अब भुला ही दीजिए, इसी में आपकी बेहतरी है। चलते हैं बंद, उससे पहले हम खुशामदीद कहना चाहेंगे, तशरीफ लाए हैं जनाबे शहरियार साहब नॉर्थ हॉल लंदन से, रफाकत साहब तशरीफ लाए हैं ग्लासगो से। हम आप दोनों अहबाब को दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। रफाकत भाई इस वक्त अपने अहले खाना के साथ हमारी बज्म में शामिल हैं, शहरियार साहब भी अहले खाना के हमरा हमारी बज्म में शामिल हुए हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं और आपका मोहब्बत भरा सलाम हम तमाम अहबाब तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर, हमारी ये नशियात आपकी खिदमत में पेश की जा रही है यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे ऑनलाइन सुना जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उन सोते मुजाहिदों और नादीदा लिसनर्स की एक कसी तादाद तकरीबन 83 इस वक्त है जो हमारी इस बज में शामिल हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए 84 हो गए हैं, आप सबके लिए एक खूबसूरत गीत का तोहफा पेश करूंगा, इसलिए कि आप ऑनलाइन दुनिया के चार कोने में खामोशी के साथ तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम गजल उसने छेड़ी की इज्जत और तौकीर में इजाफा करते हैं। अभी तो हम चल रहे हैं बंडली, जहां मौजूद हैं शकील साहब। शकील भाई आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ऑनलाइन। अभी तो हम चलते हैं आपके उस गीत की जानिब जिसे आपने सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे हजरत मोमिन खां मोमिन का एक शेर याद आ रहा है जो आपकी अदबी शख्सियत के नाम कर रहा हूं। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। आपका तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए। आमद का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। परदेसी मजीद साहब का मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और ऑनलाइन दुनिया के चार कोनों में। मैं घड़ी की जानिब देख रहा हूं जो इशारा कर रही है कि थोड़ी ही देर बाद कमर्शियल का वक्त हो जाएगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी कमर्शियल के बाद आपका पसंदीदा सेगमेंट लेकर, एक शायर एक गीत दो आवाजें। साथ ही साथ मैं अपने उन तमाम अहबाब को जो इस वक्त हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, माशाल्लाह 106 हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जो हमारे हमराह मौजूद हैं, इस सेगमेंट के बाद एक बहुत ही हसीन गीत का तोहफा हम अपने उन तमाम नादीदा लिसनर्स और सोते मुजाहिदों के नाम करेंगे जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। लेकिन कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद हम आपके खिदमत में आपका पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो आवाजें लेकर हाजिर रहेंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गजल उसने छेड़ी की इज्जत तौकीर में इजाफा करना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे। रफाकत साहब ग्लासगो से हमारे हमराह मौजूद हैं। रफाकत साहब, आपका गीत मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह प्रोग्राम सुनते रहिए, जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। आपका मोहब्बत भरा सलाम मैंने तमाम सामईन और नाज़रीन तक पहुंचा दिया है। शहरयार साहब, आप भी अहले खाना के हमराह नॉर्थ हॉल लंदन में हमारी नशियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आपकी पसंदीदा गज़ल भी मैंने नोट कर ली है और प्रोग्राम सुनते रहिए, इंशाल्लाह इसे शामिल प्रोग्राम करेंगे। बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। मुलाकात होती है इसके फौरन बाद आपके पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो आवाज़ में।
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
6: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
6: आप भी
5: जरूर आइएगा। उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
1: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

और दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह बाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज में तशरीफ लाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677।

अब हम चलते हैं आज के एक शायर, एक गीत और दो आवाजों की जानिब। आज हमने जो इंतखाब किया है ये एक फिल्म थी 1979 की। फिल्म का नाम था मंजिल और इसमें हीरो थे अमिताभ बच्चन और हीरोइन थी मौसमी चटर्जी। इस फिल्म के बेशुमार गीत, एक गीत ने शोहरत और मकबूलियत की तमाम तर बुलंदियां तय की। ये गीत तहरीर किया था युगेश फिल्म के युगेश साहब ने। युगेश गुरु बेशुमार आपने गीत लिखे और बेइंतहा मकबूल हुए और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। युगेश के जो गीत जबा जदे आम हुए उनमें बहुत तवील फहरिस्त है, लेकिन मैं जिंदगी कैसी है पहली हाय, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, रिमझिम गिरे सावन, जिसे आज मैंने मुंतखब किया है, एक शायर एक गीत और दो फनकारों की आवाजें। दोस्तों, एक तो युगेश के खूबसूरत बोल और सुनने पे सुहागा ये हुआ कि इसकी मौसीकी तरतीब दी आर डी बर्मन ने, जिन्हें उस्ताद मौसीकार कहा जाता था। तो आज का जो तोहफा हमने रखा है आपके लिए 1979 की फिल्म मंजिल से और ये गीत अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पर फिल्म आए गए। युगेश के बोल, आर डी बर्मन की मौसीकी और किशोर कुमार की खूबसूरत सहरंगेज मिसमराइज कर देने वाली आवाज सुनते हैं। एक शायर, एक गीत, दो आवाजें में।

और दोस्तों ये है पहला तोहफा, एक शायर एक गीत और दो आवाजों में, और दूसरी आवाज थी सुरों की मलका लता मंगेशकर की। गीत वही, योगेश ने तहरीर किया, आरडी बर्मन ने इसकी मौसीकी तरतीब दी, फिल्म का नाम था मंजिले। और साथ ही साथ आपको हम ये बताते चलें, योगेश फिल्म के बैनर तले बे इंतहा फिल्में आपने तहरीर भी की योगेश ने। गीत तो आप तहरीर करते ही थे और जो मकबूल भी होते थे, लेकिन फिल्में भी तहरीर की। 2020 में योगेश सिधार गए जहान फानी से, लेकिन हमारे लिए बे इंतहा खूबसूरत नगमात का हसीन तोहफा छोड़ गए जैसे ये।

और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे एक शायर एक गीत दो फनकार, जिसमें आज हमने 1979 की फिल्म मंजिल का एक गीत मुंतखब किया था, जिसे तहरीर किया था योगेश ने, मौसीकी से संवारा था आरडी बर्मन ने और आवाजें आपने किशोर और लता मंगेशकर की सुन ही ली। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे अपने उन मेहमानों का जो इस दौरान तशरीफ लाए हैं। हिंदुस्तान की मौजूदा मुखेज शहर आपने किशोर और लता मंगेशकर की सुन ही ली। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे अपने मेहमान जो इस दौरान तशरीफ लाए हैं। हिंदुस्तान की मौजूदा मुखेज शहर अमरोहा के मारूफ

अय्यूब चौहान साहब, कहते हैं कि अस्सलामुअलैकुम रिफत अब्बास भाई, आज मुझे फिल्म का नाम उन्होंने बताया और गीत के बोल लिखे हैं। आप इस वक्त बर्मिंघम में हैं, अहले बर्मिंघम को मेरा सलाम पहुंचे। मैंने आपका लिखा हुआ गीत नोट कर लिया है और जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अभी तो हम कर रहे हैं, बेशुमार हमारे सुनने वाले इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, 100 से ज्यादा तादाद में, और ये उनकी मोहब्बत है कि खामोशी के साथ, इसीलिए मैंने नादीदा लिसनर और सोते मुजाहिद कहता हूं। सो हम इन नादीदा लिसनर और सोते मुजाहिदों के नाम इस खूबसूरत गीत का तोहफा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत से रखे और नजरे बद से बचाए, आपकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम।

0: आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीम वादी में और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से ऑनलाइन सुना जा रहा है। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज्म की रौनक बढ़ाना चाहें, हम उन्हें स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274 3066 77 पर खुश आमदीद कहेंगे। नंबर हम एक मरतबा फिर दोहरा देते हैं, 01274 3066 77।
1: Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
7: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे।
8: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
8: लीज रोड फेस्टिवल।
7: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
8: आप भी
7: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काकी की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
1: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
11: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: और दोस्तों ये पसंद थी हमारे बर्मिंघम में मौजूद मोहम्मद अयूब चौहान साहब की। और अब हम हवा के जोश पर फ्लाई करते हुए पहुंच रहे हैं स्वीडन, जहां हमारे काबिल सदराम मदब के एक बहुत खूबसूरत शहदाई और रखवाले भी मैं कह लूं मौजूद हैं, जिनकी रूह में अदब की चाशनी बदर जाए उत्तम मौजूद है। और आज हमारी खुशनसीबी यह है कि वहां हमारे एक बुजुर्ग जो यही वतीजा रखते हैं, जो दीवानों का है, हमारा है, आपका है और नवीद का है, जनाब मियां नजीर अहमद साहब भी मौजूद हैं, जिन्हें हम दिल की तमाम तर गहराइयों से आज की इस महफिल सुखन गजल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं नवीद मियां से। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम। आपने ना बहुत बड़ी बात कह दी, हम कहाँ रखवाले, हम तो तालिबे इल्म और सिर्फ चाहने वाले।
0: ना देखिए, पता है क्या, जब अदब के मामले में शऊर इस हद तक बढ़ जाए कि लोग पहचानने लगे कि ये कलाम कहने का अंदाज फलाने शायर का है, ये शेर उस्तादों का शेर है, ये शेर आम शेर नहीं। जैसे आपने एक शेर मुझे रवाना किया था, मैंने जब वो पढ़ा, मैं अभी देख के भी बताता हूँ, तो मुझे ये एहसास हुआ कि भाई जिसका ये शेर है वो तो खुद ऐसा है कि दूसरों की इस्लाह करे, और ये असल में मैं इस्लाह का कायल नहीं हूँ, अपनी इस्लाह खुद करनी चाहिए। आपने वो मियार पैदा हो जाए आपकी शायरी, अगर आप शेर कहने का ज़र्फ़ रखते हैं, और जो शख्स दूसरे के शेरों को पहचान सकता है वो शेर भी कहता है।
1: मैं आपसे अगर मोहलत चाहूँ तो गुंजाइश अगर मुझे दें आप, तो मैं जिंदगी का फलसफा इसमें एक तरह से आपको बयान कर देता हूँ
0: जी,
1: कि ये जो नफ्स है ना, ये आप कहें कि मेरी वाह वाह हो तो नहीं हो सकती, इसको जब मिटाने के लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, दर्द किया है ना,
0: बेशक
1: ऐसे ही अपनी इस्लाह करना सबसे बड़ा कमाल
0: है, बहुत बड़ा कमाल है। आपने जो शेर लिखा था वो था मरने की आरजू ने तो जीना सिखा दिया,
1: हाँ।
0: अब कौन आके हमको मरना सिखाएगा, ये ऐसा लगता है कि बहुत पुख्ता शायर का शेर है, इसमें इस्लाह की गुंजाइश ही नहीं है मियां।
1: अब एक और शेर सुनिए,
0: सुनाइए।
1: कल ये समझा था कुछ नहीं जाना, कल ये समझा था कुछ नहीं जाना, आज जाना हूँ कुछ नहीं समझा।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज जाना हूँ कुछ नहीं समझा,
1: कल ये समझा था कुछ नहीं जाना, कल ये समझा था कुछ नहीं जाना, आज जाना हूँ कुछ नहीं समझा। तो अगर ये किसी के पहुंच गया हो तो बड़ी मेहरबानी उनकी।
0: अरे बहुत बहुत बहुत अहले शौक हमारी बज़्म में शामिल होते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अदब के एक और शहदाई का आपने तारुफ कराया है मियां नजीर अहमद साहब का। मेरी दुआ है,
1: मेरे दोस्त हैं, और मैं उसी के नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ कि दोस्तों में ना जी, सिर्फ का ख्याल, मैं औरत और मर्द की दोस्त का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, ब्लंटली मैं कहता हूँ, ऑन मतलब
0: असल में जिस मजहब के हम मानने वाले हैं उसमें औरत और मर्द की दोस्ती है ही नहीं, तो इसको तो काउंट ही नहीं करना चाहिए, खत्म बात। पंजाबी कहते हैं गल मुक गई,
1: वो फितर मैं लॉजिकली कह सकता हूँ लेकिन बिगाड़ है वो। मैं अमेरिका यूरोप में रहता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ 18 साल से, मुझे पता है क्यों, लेकिन बात की बहस क्योंकि किसको मैं छेड़ना नहीं चाहता, हर किसी का अपना मानना है, उसको मैं उसके पर्सपेक्टिव की कदर करता हूँ, लेकिन हम फितरत के करीब लोग हैं, हम फितरत को बड़ा प्यार करते हैं, शायर फितरतन मासूम ही होकर।
0: बेशक तो
1: अर्ज करता हूँ कि हमसे भी कोई पूछता नुकसान हमारा,
0: हमसे भी कोई पूछता नुकसान हमारा,
1: मेले में कहीं खो गया इंसान हमारा,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, मेले में कहीं खो गया इंसान हमारा,
1: हाय हाय,
0: वाह वाह वाह वाह वाह, अता कीजिए अता कीजिए।
1: रिफत भाई, हमसे भी कोई पूछता
0: नुकसान हमारा,
1: मेले में कहीं खो गया इंसान हमारा,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: आंखों में कहीं टूटे टूटे ख्वाब पड़े, आंखों में कहीं टूटे हुए
0: ख्वाब पड़े
1: हैं, सीने में कहीं दफन है अरमान
0: हमारा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, सीने में कहीं दफन है अरमान हमारा, वाह वाह वाह वाह,
1: अरे किससे कहें काश कोई सुने, आंखों में कहीं टूटे हुए ख्वाब पड़े हैं, सीने में कहीं दफन है अरमान हमारा,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: और हम लोग मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे,
0: हम लोग मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हैं,
1: हम लोग मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे, अब साथ लिए फिरते हैं जिंदान हमारा,
0: अब साथ लिए फिरते हैं जिंदान हमारा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: अरे बड़ी मेहरबानी आपको शेर समझ में,
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: और जैसे किसी आसेब का साया हो यहाँ पर, जैसे
0: किसी
1: आसेब का
0: साया
1: हो यहाँ पर, घर ऐसा नहीं था कभी वीरान
0: वीरान हमारा, वाह वाह वाह वाह वा। क्या इंतखाब है, क्या मुरस्सा इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह,
1: आप दादीजिए ख्याल फैसल महमूद साहब लिखने वाले
0: जी जी।
1: कहते हैं कि वो शख्स तो एक रोज खुदा हो ही चला था, वो शख्स तो एक रोज खुदा हो ही चला था, खतरे में पड़ा था कभी ईमान
0: ईमान हमारा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: और हम खुद को मिटा देंगे मोहब्बत में, हम
0: खुद को
1: मिटा देंगे मोहब्बत में किसी दिन, तब जाके कहीं मानोगे एहसान
0: एहसान हमारा, वाह वाह वाह वाह भाई वाह वाह, क्या इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह,
1: आपकी मेहरबानी, और एक आग जो सीने में भड़कती ही रहेगी,
0: एक आग जो सीने में भड़कती ही रहेगी,
1: जलता ही रहेगा यही शमशान हमारा,
0: आए हाय हाय, जलता ही रहेगा यही शमशान हमारा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: अरे किस्मत का गिरा नहीं करते, हमें तो मर्जी से नुकसान पसंद है,
0: आए हाय शमशान हमारा, क्या बात,
1: और सुनिएगा कोमल जोजे साहब शायद कमाल करती हैं, कहती हैं ना चश्म गम से मेरी अब नमी ने जाना है, चश्मे गम से मेरी अब नमी ने जाना है, ना दिल से तेरी मुसलसल कमी ने जाना है,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: ना चश्मे गम से मेरी अब नमी ने जाना है, ना दिल से तेरी मुसलसल कमी ने जाना है,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कहीं ये आखिरी मंजर नजर पे बोझ ना हो, हवा चिराग बुझा दे किसी ने जाना है,
0: क्या बात है क्या बात है,
1: सुनिएगा मैं दोबारा अर्ज करता हूँ
0: जी जी,
1: कहीं ये आखिरी मंजर नजर पे बोझ ना हो, हवा चिराग बुझा दे किसी ने जाना है,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: आप पहुंचे नहीं ख्याल पे, चले कोई बात
0: नहीं, मैं पहुंच गया हूँ, मेरी निगाह घड़ी की जानी है कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, तो
1: बस कभी वक्त आ रहा है, चले खैर ये फिर बड़ा कीमती चीज जाया हो जाए तो फिर अपनी घड़ी को रोक लिया करें सर।
0: अच्छा मैं आपसे अर्ज करूँ, कोमल जोया का मैंने कलाम पढ़ा है और मुझे एहसास हो रहा है कि ये आने वाले कल की परवीन शाकिर न बन जाए, क्योंकि इस कदर खूबसूरत कहती है,
1: देखे मैं किसी शख्सियत का कायल नहीं हूँ, मैं तो ख्याल का कायल हूँ और मुझे परवीन से ऊंचे ख्याल इनके लगते हैं, परवीन रोमांस की शायरा थी या उसके दर्द
0: की,
1: ये ख्याल
0: की शायरा थी,
1: यहाँ पे ये वो शायरा है जो इंसान को जैसे इसका मेयार बहुत ऊंचा है,
0: बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत कहती है,
1: हाँ मैं कैद नहीं करता इंसान को परवीन शाकिर साहब,
0: मुझे कुछ कुछ गुमान हो रहा है ऐसा, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, और मैं आपसे इजाजत लेने से पहले अपने काबिले से एहतराम आपके प्यारे से दोस्त अल्लाह आपकी दोस्ती को कायम रखे, नजर बद से बचाए और हिज्ज़ अमान में रखे, मियां नजीर अहमद साहब की नजर मुझे कतई याद आ गया, नदीम सागर का, कि जिंदगी को तलाश करता हूँ, रोशनी को तलाश करता हूँ, एक पागल हूँ मैं भी दुनिया में, آدمی کو تلاش کرتا ہوں, زندگی کو تلاش کرتا ہوں, روشنی کو تلاش کرتا ہوں. ایک پاگل ہوں میں بھی دنیا میں, آدمی کو تلاش کرتا ہوں.
1: سر کیا بات ہے, بڑے بڑے ہوتے ہیں, مزہ آ گیا رفیع بھائی. اور یقین مانیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تنقید برداشت کیا کیجیے, اپنی انا کا بت دھانا سیکھ لو خدا کی قسم.
0: ارے صاحب یہ فن اگر آ جائے تنقید برداشت کرنے کا تو لوگ بڑا انسان بن جائیں.
1: بس یہ جو
0: بہت شکریہ احمد کا.
1: اور آج کا دور ایسا ہے کہ کوئی آپ سے کہہ دینا کہ بھائی تھوڑا اس پہ ٹھیک, او ہو یہ اسے پتا نہیں کیا کیا تمغے دیے تھے, لیکن کبھی بھی اصلاح کے لیے خیر کے لیے ہم اپنے در کھلے نہیں رکھتے سر. بہت بڑی زیادہ
0: بہت شکریہ احمد کا, بہت شکریہ نوید. اور میاں نذیر احمد صاحب کو میرا خصوصی محبت بھرا سلام پیش کرنا.
1: پہنچ گیا,
0: اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. جیتے رہو میاں.
2: .co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is.
4: And the winner is.
5: And the winner is.
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
0: Hello, assalamu alaikum.
7: Leaflet Festival 2026 Mela 15 and 16 August. Haan
0: haan, abhi abhi 2 minute ka hai.
7: Jahan pehli baar Maya Naz log fankar Naeem Hazarvi apne fan ka muzahira karenge.
8: Fashion, food stalls, kids entertainment aur bahut kuch.
7: Ek khoobsurat day out aap sab ke liye Saturday and Sunday 15 and 16 August 2026.
8: Leeds Road Festival.
7: Bradford Asian Radio the official media partner.
8: Aap bhi
7: zarur aaiyega. اتنی پیاری پیاری
0: کھڑکیاں, آگے پیچھے کھسکا نہیں سکتے نا اس کو, یہ آتا ہے کمپیوٹر پہ اور اسے لینا ہے اسی وقت, ورنہ وہ گزر جاتا ہے. وہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا سی ڈی بنی ہوئی پلے کر دی, یہ کمپیوٹر پہ آتا ہے, اس کو اسی وقت لینا پڑتا ہے جس وقت آنا. سمجھ گئے, ہاں
9: سہانا لگتا ہے.
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ.
0: میں ایک بات بتاؤں, ابھی میرے پاس پتہ کیا
10: مردانہ
0: میرے پاس مرکز جن کے لباس سرکل ہے جس میں میں گھوم رہا ہوں, میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے.
10: جیسا بھابھی نے کاپی
0: ڈلوائی ان شاء اللہ ایک ہے, ایک ہے, ایک ہے. وہ ایک قطع آپ کی نظر کر دوں, شطرنج ہے مگر ایسی,
10: اور وہ بھی فری میجرنگ فری کوٹنگ اور فری.
0: میرا اپنا یہ قطع ہے کہ شطرنج ہے مگر ایسی, جس میں شطرنج ہے مگر ایسی جس میں ہر شے پیادہ لگتا ہے. اور خودکشی کا دوسرا نام ہے یہ,
11: آج کسی نئے
0: ایک وقت زیادہ رکھتا ہے.
12: کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
11: جی ہاں بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرون,
12: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے, اوپن 7 ڈیز, بیلز سی روم 46 رولی ایونیو بریڈفورڈ BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
13: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ میں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. میں موتریز دی اکاؤنٹنٹ, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکس اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹ بنوانے کے لیے اب اعتماد موتریز دی اکاؤنٹنٹ آڈیٹ اینڈ
0: اکاؤنٹنٹ
13: کمپنی فارمیشن مارگیجز اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان. میں موتریز چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ, میں موتریز روڈ آن بریڈفورڈ 424453, میں موتریز ویز.
2: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio,
0: what are the
2: sales
0: to
2: 01274 306677 or 07800 9 5 6 3
0: कुछ जब दिल का हाल रहता है भूल जाता है आदमी सब कुछ सिर्फ उसका ख्याल रहता है हाँ वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ लव टू गिव यू टाइम इन दैट मैटर एक जुमले ने मुझे सारी बात पहुंच

और जिससे ये पसंद थी डॉक्टर माहरुख साहिबा की ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी से, जो हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाने के लिए बाकायदगी से तशरीफ लाकर इस प्रोग्राम की इज्जत बढ़ाती हैं। अब हम आपको लिए चल रहे हैं वेकफील्ड, जहां बारबेक्यू चल रहा है और मौजूद हैं जनाब वकार साहब अपने अहले खाना के हमरा, और कहते हैं कि हम सब आपका प्रोग्राम अपने गार्डन में बैठे सुन रहे हैं और जो गीत आपने कहा है वो गीत हम आपकी नज़र कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि इससे न सिर्फ ये कि आपके बारबेक्यू का लुत्फ दोबारा हो जाएगा। वकार जीते रहो, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे अहल खाना को हमेशा

अपने ही जमान में रखे। कमर्शियल के वक्फे के बाद हम आपको स्वीडन लिए चलेंगे, जहां पहली मर्तबा हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं जनाब मियां नज़ीर अहमद साहब। ये हमारे प्रोग्राम के लिए बाईस से सद इफ्तिखार है। उनकी नज़र अपनी पसंद का वो गीत पेश करूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कमर्शियल के वक्फे के बाद। लेकिन अभी तो हम चल रहे हैं वेकफील्ड और पेश कर रहे हैं वकार मियां, आपका तोहफा। कबूल कीजिए।

0: دوستو وقت پورا جا رہا ہے کمرشل کا، آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، ہمارے احباب ابھی موجود ہیں جن میں بھگت سنگھ صاحب آپ کا تحفہ آپ کی نظر کرنا ہے، وقار میاں آپ کا تحفہ تو ہم نے آپ کی نظر کرنا ہے، شہریار صاحب کی غزل ان کی نظر کرنی ہے، لیکن اس سب سے پہلے کمرشل کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے سویڈن اور جناب میاں نذیر احمد صاحب کا تحفہ ان کی نظر کریں گے۔
1: ایشین ریڈیو آن 1413 AM DAB پلس موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے۔ دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
7: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे।
8: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
8: लीज रोड फेस्टिवल।
7: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
8: आप भी
7: जरूर आइएगा। उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
1: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-677.
4: और आइए दोस्तों, अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है, तो हम आपको लिए चलते हैं स्वीडन, जहां पर हमारे मोहतरम मियां नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं, जो हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर और कॉलर नवीद साहब के अजीज जान दोस्त हैं। उनकी नज़र एक कता कतील सिफाई का जहन में आ गया है, और फिर वो गीत जो हमारे दिल के बहुत करीब है और हमें बहुत पसंद है, कि दुनिया की हर एक शय से मोहब्बत है अजीम, दुनिया की हर एक शय से मोहब्बत है अजीम, वाइज नहीं कर सकता दिलों की तकसीम, दुनिया की हर एक शय से मोहब्बत है अजीम, वाइज नहीं कर सकता दिलों की तकसीम, तलवार चलाए कि छुरी से काटे, तलवार चलाए कि छुरी से काटे, पानी तो नहीं होगा किसी तरह भी दो नीम, दुनिया की हर एक शय से मोहब्बत है अजीम, वाइज नहीं कर सकता दिलों की तकसीम, तलवार चलाए कि छुरी से काटे, पानी तो नहीं होगा किसी तरह से दुनीम। अल्लाह ताला कतील सिफाई के दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या शायर थे, क्या बात थी। और आपके लिए जो मैंने गीत पसंद किया है मियां साहब, वो कुछ यूं है।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio. Your sales multiplier. Bradford Asian Radio. The world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेंस बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306 77.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678
9: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत्र रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट मैं मूत्र रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत्र रिजवीज
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to Bradford Asian Radio,
13: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस 106
7: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274 414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

अरे पहले तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: धूले का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Call the studio now, 01274-306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274-306677 or 07800-599-563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

हो झुम झुम झुम झुम झुम रो पकड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ़ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260
11: You are listening to Bradford Asian Radio on 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घर को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुताफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस 106
7: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवत लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस 106
6: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678
9: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवत लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-677. Bradford Asian Radio. The world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइक ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट महमूद रिज़वी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिज़वी
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio.
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: No llores, no pierdas la fe, la sé, la calma el que hace. Agua de la arena, y tú que te levantas con orgullo entre las piedras, has hecho mares de este polvo.
1: Yeah. I throw stones at my eyes, for too long they've been dry.
2: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
8: ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ
9: Leeds Road Festival 2026 Mela 15 and 16 August ko
10: ek baar phir More Park Killing Hall Road Bradford mein
9: jahan pehli baar King of Bhangra Ibrahim Rahul Haq apne gaanon se aapke dilon ko dhadkayenge
10: fashion food stalls kids entertainment aur bahut kuch
9: ek khoobsurat day out aap sabke liye Saturday and Sunday 15 and 16 August 2026
10: Leeds Road Festival
9: Bradford Asian Radio the official media partner
10: aap bhi
9: zarur aayega उफ़ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
10: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
9: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
10: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
9: फर्स्ट चॉइस
10: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
9: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
10: 01274317644
11: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
10: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
12: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
12: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
12: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
12: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
12: आपकी शान
10: हमारी आन
12: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स
2: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
14: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
10: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.